आमी भारत दिलाम टू यू एंड यू एंड टू एवरीवन हियर कठिन अंक एक कोष्ट दिलाम ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू सी कॉलेज स्क्वायर।